दोस्तों साथियों को स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रोग्राम का विनेश और शुक्रिया करना चाहेंगे हमेशा आप लोग जुड़ जाते हो इस समय हमारे साथ में। जी हाँ, आज शनिवार है, हम क्राइस्टचर्च में हैं। वेदर काइंड ऑफ मिक्स्ड है, उतना ठंड भी नहीं उतना गर्मी भी नहीं है, इट्स अ बिट क्लाउडी, बट आई एम श्योर यू आर ऑल एंजॉइंग योर सेल्फ। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो देन प्लीज़ बी अ लिटिल बिट केयरफुल। और आज का जो प्रोग्राम है, हमारे पास गेस्ट जुड़ चुकी हैं, विल बी टॉकिंग टू तृप्ति कामत जी एंड शी हैज वन अ क्राउन रिसेंटली, उसके पूरे विषय में हम आपको बतलाएंगे। बट आपको ये भी याद दिला दे, कुछ इवेंट्स है आज, टेम्पलटन आप जा सकते हो, हरियाली दी टीच ऑफ आई थिंक 5:30 से डोर ओपन होता है, यू कैन गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। और उसके बाद में इंटरव्यू के बाद में जुड़े रहिए हमारे साथ में, क्योंकि हमारे पास कुछ सॉन्ग्स भी है जो हम आपको सुनाते चलेंगे। तो चलो हम आज का जो इस प्रोग्राम शुरू करते हैं, वी आर गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग आपके लिए और उसके बाद में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू अवर गेस्ट और उसके बाद में अ फ्यू मोर सॉन्ग्स फॉर यू, फिर हम आपसे अलविदा लेंगे। जी हाँ, और हम बस यही आशा करते हैं दैट आप अपना जो टाइम एंजॉय कर रहे हो, और देखते देखते समय भाग रहा है, लाइक वी आर इन व्हाट अगस्त और थोड़े देर में सितंबर हिट हो जाएगा। एंड आई नो मेनी पीपल आप लोग प्लान कर रहे होंगे क्रिसमस के विषय में, वे आपको कहाँ जाना है। सो एक्चुअली हम भी वही कर रहे हैं, बिकॉज इट जस्ट गोइंग सो फास्ट। एनीवेज लेट्स हियर दिस सॉन्ग और उसके बाद में वी विल स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन।

जी हाँ, फैशन का जलवा वो गीत आप सुन रहे थे, आशा कि आपको पसंद आया होगा। आई नो इट, वो मेमोरीज हमें ब्रिंग कर देती है दैट पर्टिकुलर मूवी एंड देयर वाज अ टाइम अ बिट ऑफ क्रेज एज वेल, और इट रिलेट्स टू व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट। सो यू हैव गेस्ट, जी हाँ, हम फैशन काइंड ऑफ पेजेंट क्राउनिंग मॉडलिंग जो भी आप कह सकते हो, एंड देट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो हम वेलकम करना चाहेंगे आज के जो हमारे गेस्ट है तृप्ति कामत को, जो पहली बार हम उनसे एक्चुअली मुलाकात भी कर रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक टू हर टुडे एट दिस स्टूडियो, एंड थैंकिंग प्लेन्स मीडिया एज वेल, एंड थैंकिंग निको इज बिहाइंड दी कैमरा, जो हमारे आज हेल्प कर रहे हैं विद दी वीडियोग्राफी। सो तृप्ति, वट आई हैव नोन सो फार दैट यू हैव वोन समथिंग, अगर आप जो फेसबुक पेज में हमें देख रहे हैं, एंड निको इफ गुड टू point the camera to our guest. So there is Tripti Kamath, और जैसे आप देख रहे हो, शी इज क्राउंड एंड शी हैज़, हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू हैव ऑन द मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड एलिट विनर, दैट्स हु यू आर, दैट्स वाओ, क्वाइट एन अचीवमेंट। आई हैव नो आइडिया क्या प्रोसेस है, आपको ये क्राउन कैसे मिलता है, एंड दैट इज मे बी समथिंग दैट वी विल बी एबल टू फिगर आउट टुडे, और आई नो यू शुड बी प्रीटी एक्साइटेड फॉर गोइंग दैट।

0: तो चलो हम शुरू करते हैं. तृप्ति जी, आप बताइए कि वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम?
1: थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. आई एम तृप्ति कामत, ओरिजिनली फ्रॉम मैंगलोर. माई रूट्स आर फ्रॉम मैंगलोर, बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई. एंड बिफोर कमिंग टू न्यूजीलैंड एंड मेकिंग न्यूजीलैंड माई होम, आई वॉज इन दुबई फॉर 17 ईयर्स, लिविंग एंड वर्किंग देयर. तो ग्लैमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड एलीट विनर बनी हूँ जस्ट लास्ट वीक. 10 दिन बने हैं अभी और फील्स रियली प्राउड एक्चुअली, खुद के लिए और फैमिली के लिए भी. और शादीशुदा हूँ, हस्बैंड के साथ यहाँ रह रही हूँ. और ग्लैमॉन एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज है. आई थिंक एवरी वुमन शुड गिव इट अ ट्राई.
0: ऐसी. और ये जो ग्लेमोन है, इसका स्टेज कहाँ पे, कहाँ गए थे आप इंडिया में?
1: मेरा ये जो शो था जयपुर राजस्थान में था. प्रॉपर 5 डेज का जो शो था, बहुत ही मज़ा आया. देर वेर 16 कंटेस्टेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु पार्टिसिपेटेड फॉर दिस इवेंट. और जो अच्छा बॉन्डिंग बना, जो हमें कोचिंग मिला था लास्ट 3 मंथ्स से, दैट हाउ टू हैव अ कम्युनिकेशन, क्वेश्चन आंसर राउंड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउंड्स होते हैं इसमें जो हमें ट्रेन किया जाता है. और फिर इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ वैलिडेशन, बट जो अच्छा परफॉर्म करता है वो विनर बनता है. और देर वेर क्वाइट अ फ्यू रनर्स अप एज वेल, फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो बहुत ही एंटरटेनमेंट रहा. और जो को फाउंडर है मन दुआ, उनका भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस रहा, एडवाइजेज रहा ऑल थ्रू आउट आर जर्नी. सो ये जर्नी, आई वॉज सेलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट लास्ट ईयर इन दिसंबर 2025. उसके बाद जो हमें ट्रेनिंग मिली, दैट वॉज रियली इंटेंसिव. आई थॉट चलो अटेंड कर लेते हैं, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ रियली चैलेंजिंग एंड इवेंटफुल प्रोग्राम. सो या
0: जी हाँ, तो ये जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन या सिलेक्शन वाला, डू यू डू काइंड ऑफ ऑनलाइन या यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको आप फिजिकली मीट करते हो?
1: नहीं, हम ऑनलाइन करते हैं रजिस्ट्रेशन. इनका एक वेबसाइट होता है. वन ऑफ माई फ्रेंड, उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू जस्ट गो फॉर इट. और मैंने कहा ये सच में आई हैड दैट काइंड ऑफ अ सेल्फ डाउट कि ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं. बट दिस होल जर्नी, लाइक ये जो हमारे कोचेज़ रहे हैं और ये जो हमारी फाउंडर रही हैं, उन्होंने बहुत सारा एनकरेजमेंट और सपोर्ट दिया, उस वजह से ये हम कर पाए हैं. और रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी सिंपल. इनका नेक्स्ट सीजन भी अभी आने वाला है. सो आई वुड एनकरेज लेडीज आउट हियर फ्रॉम न्यूजीलैंड दैट यू शुड गो एंड गिव इट अ ट्राई. डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है. यू जस्ट हैव टू अप्लाई एंड जस्ट गिव इट अ गो.
0: जी हाँ. और जब आप बोल रहे थे कि आपको ट्रेनिंग मिला है, एंड सो लाइक डू हैव टू बी देयर, लाइक कब, व्हेन इज द टाइम दैट यू हैव टू बी इन इंडिया?
1: इट इज़ प्रिटी चैलेंजिंग नोइंग दैट वी आर मैरिड लेडीज. हमारा जॉब होता है, हमारा पर्सनल लाइफ होता है, और फिर हमारा ये पैशन होता है. दिस वॉज माई पैशन दैट आई हैव टू यू नो बी अंडर स्पॉटलाइट और कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में. तो जो हमें ये ट्रेनिंग रहा है वो आफ्टर ऑफिस रहता था, और सारे जो वर्ल्ड वाइड कंटेस्टेंट्स होते थे उनके हिसाब से हमारे बैचेस होते थे, डिवाइडेड इनटू टू. जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से होते थे, हमारा एक बैच होता था शाम के टाइम वीकेंड्स पे, जहां हमें वीडियो ट्रेनिंग होता था, वॉकिंग सेशंस होते थे, कम्युनिकेशन होता था. सो कोचेस भी हमारे स्कॉटलैंड से थे. जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन कोच है नेहा, और जो हमारी ग्रूमर थी मोनिका मैम, वो इंडिया में थे. तो हमारा सब ये टाइम जोन्स मैच होकर एक बैच बना था. और यस, दी ट्रेनिंग वाज ऑल अबाउट वीडियो ट्रेनिंग, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा.
0: जी. एंड देन आई गेस जो लास्ट 5 डेज की बात कर रहे हो, दैट्स व्हेन यू ऑब्वियसली हैड टू बी फिजिकली प्रेजेंट.
1: यस यस, दैट वाज द टाइम व्हेन आवर पेजेंट वाज पेजेंट. जो ग्रैंड फिनाले था वो 6 अगस्त को था, और हमें आके बोला गया था कि 2 अगस्त को आपको वहाँ वेन्यू में रहना है. और वेन्यू में हमें 5 दिन की जो ट्रेनिंग हुई है, स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग 8 AM टिल 11 एट नाइट, हम जब वाइंड अप करते थे हमें ब्रेक्स

0: चलते थे, हमारा फोन्स वी वर नॉट अलाउड टू यूज, इट वॉज ऑल अबाउट यू नो ब्लॉकिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड जस्ट फोकसिंग टूवर्ड्स आर गोल, कि क्या है, क्या सीरियसनेस है ये. लोगों को लगता है थोड़ा टाइम पास है, बट ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा सीरियस था. और हमारे शो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो थे, मोहित कपूर, ही इज़ बीन अ रियली नाइस पर्सन. उनके जो कोरियोग्राफी होती थी, उनका जो वो सब सिखाना होता था, हम बहुत कुछ सीख पाए हैं सारे लोग. सो इट वॉज ऑल अबाउट यू नो एक फैमिली बन गया था जो 5 दिनों का वो जो शो था. सो इट वॉज मोर ऑफ 3 मंथ्स ऑफ वीडियो ट्रेनिंग एंड 5 डेज ऑफ पर्सनल जो ट्रेनिंग था वहाँ पर. बहुत मज़ा आया.
1: जी. एंड व्हाट वाज योर रिलेशनशिप विद द कॉम्पिटिटर्स? वाज इट लाइक क्या कहते हो उस सीरीज का, बिग बॉस?
0: बिग बॉस जैसे वो फीलिंग आ रहा था जब मैं यहाँ से जा रही थी कि ओह आई हैव टू सी 16 कंटेस्टेंट्स, स्ट्रेंजर्स हैं, पता नहीं कैसे होगा. बट आई वुड से दैट द बॉन्ड वी ऑल हैव, इट्स लाइक यू नो वी आर लाइक इनसेपरेबल सिस्टर्स. एक दूसरे की मदद करना, जो यू नो बाल ठीक करना हो या कुछ भी अगर ज़रूरत हो, दे वर देयर फॉर अस. सो ऐसा वो लगा ही नहीं वो पल दैट यू नो दे आर डिफरेंट. वी ऑल वेर लाइक सिस्टर्स एंड इवन नाउ अभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं. एंड जो हर एक विनर तो नहीं होता, जो विनर हो रहा था तो आई कुड सी द बैक स्टेज, यू नो सारे अप्लॉड कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे. इट वॉज वंडरफुल. सो
1: जी हाँ, दैट्स क्वाइट नाइस. बहुत अच्छा लगा कि यू हैड अ नाइस एक्सपीरियंस. और जो आधा 15, वेयर वर दे फ्रॉम? कोई इंडिया से भी था?
0: इंडिया से 3 लोग थे, बाकी सारे लंदन से थे, कनाडा से थे, यूएस से थे. सो इट वाज ऑल अबाउट यू नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और सबके अलग अलग स्टोरी थी, अलग अलग जर्नी थी. और जब मिलते हैं, सी इट्स अ काइंड ऑफ ब्यूटी पेजेंट, इज नॉट अबाउट यू नो जस्ट वेयरिंग मेकअप, वेयर ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड नो, इट्स नॉट दैट. इट्स अबाउट यू नो हाउ वेल यू शेयर योर स्टोरीज, योर जर्नी, एंड सपोर्टिंग ईच अदर, इनकरेजिंग ईच अदर एंड जस्ट गो फॉर इट. लाइक यू नो आप अलग ही दुनिया में जी रहे हो और बहुत ही मज़ा आता है. सो ये जो हमारा परसेप्शन होता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज़ ऑल अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल, वेयरिंग मेकअप, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी, योर टैलेंट एंड या इट्स जस्ट अबाउट टू शाइन.
1: जी हाँ. एंड यू मेंशन कि आपको स्पॉटलाइट में आना था, बट इज ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड वेर यू काइंड ऑफ यही सब थॉट्स था व्हेन यू वर गोइंग थ्रू योर काइंड ऑफ क्या कहेंगे स्कूल या कॉलेज?
0: यस आई वाज एक्चुअली आई वाज अ एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, ऑलवेज वांटेड टू डू सम स्टेज शोज. जो डांस प्रोग्राम्स होते थे, गाना होता था, डांसिंग होता था, उसमें मैं हमेशा पहले आ जाती थी. स्कूल्स में, कॉलेजेस में आई वाज ऑलवेज सामने रह के परफॉर्म करना, उसमें तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. समवेयर यू नो यू गेट मैरिड एंड देन लाइफ कीप्स गोइंग, रूटीन रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है. एक हम अपने आप के लिए टारगेट देते रहते हैं कि आई नीड टू फिनिश दिस, मे बी आई कैन परस्यू दिस लेटर. बट आई वुड से दैट यू नो यू शुड pursue your dream, whatever you have, don't put a full stop. And marriage is not a thing that you know you everything ends. I have a very supportive husband and my in-laws are very supportive. They said that you should continue what you want to do. So yes, I'm here.
1: ये तो बहुत अच्छी बात है. एंड दैट्स व्हाट वी नीड, बिकॉज सपोर्ट के बिना इट बिकम्स आई नो वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड इट्स गुड टू नो. और वैसे ओरिजिनली वेर आर यू फ्रॉम इंडिया?
0: मैं मैंगलोर से हूँ, बॉर्न और रेज्ड हुई हूँ मुंबई में. सो मेरा पूरा लाइफ जो 20 साल का था वो मुंबई में था, और फिर 17 साल दुबई में, और 8 साल न्यूजीलैंड में हो चुका है. तो या
1: जी, एनीवन एल्स इन योर फैमिली जो दैट हैड काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रीम?
0: नो, आई थिंक आई एम द फर्स्ट इन माय family that who wanted to do something different, and yes, everybody is so proud about that.
1: Yeah, I mean, getting, I think hum keh sakte, it's kind of a world stage, whereas people are coming from different countries or compete karte hain, then it is more like a world crown bhi hum bol sakte hain. Going through that, I know it was quite an amazing journey for you. What was your inspiration? Was it like Priyanka Chopra ya aur kaun tha movie mein?
0: ऐसे कोई इंस्पिरेशन नहीं था एक्चुअली. मुझे वो मेरे दिल में जो था कि मुझे

0: करना है कुछ. एंड मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई दिस. एक बार मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि जाके तो देख. एंड आई यूज टू ऑलवेज हैव दैट सेल्फ डाउट. इंस्पिरेशन मैं बोल सकती हूँ, सिंस आई हैव कम फ्रॉम मैंगलोर, तो ऐश्वर्या राय इज कमिंग फ्रॉम माई विलेज. सो डेफिनेटली उनका वो था दिमाग में कि उनके जैसा कुछ बनना है. तो उनके जैसा बड़ा तो नहीं, तो छोटा तो विन तो बनता ही है. तो ये आई एम सो प्राउड ऑफ ऑफ दैट.
1: जी हाँ, अगर ऐश्वर्या राय कभी वीडियो देखेगी देन आई एम श्योर शी क्वाइट हैप्पी विथ योर एकम्प्लिशमेंट. और जैसे आप बोल रहे हो कि जो ये पेजेंट होता है इट इज़ अ मोर देन जो आप कहते हैं ना गुड ड्रेसेस एंड लुकिंग प्रिटी, तो कौन से कैटेगरीज आपको जाना पड़ता है?
0: बहुत सारे कैटेगरीज हैं इधर. फ्रॉम 18 इयर्स टू 60 इयर्स दे कैन कम एंड अप्लाई फॉर दिस पेजेंट. और आई फॉल अंडर एलीट कैटेगरी विच इज़ द 40 इयर्स टू 50. सो मेरा आई एम 43 इयर्स ओल्ड. सो इट्स अ मैसेज टू एवरी वन, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट एज वेल. सो कोई भी आ सकता है. सो आई वॉज कॉम्पिटिंग विद द यंगर गर्ल्स एज वेल. सो मिस कैटेगरी के भी थे, मिसेस कैटेगरी के भी थे जो 30 इयर्स के रेंज में रहते हैं, 30 to 40 39. देन कम्स 40 to 49 वन कैटेगरी विच आई वॉज फॉलिंग अंडर. एंड देन 50 to 59 जो क्लासिक कैटेगरी के होते हैं, और उनमें भी थी एक कंटेस्टेंट एंड शी वन. सो विच इज़ या वेरी
1: आई सी
0: गुड.
1: एंड व्हेन यू गो थ्रू ये जो कंपटीशन जब शुरू होता है जिसे आप बोलते हो 5 days का, आई एम गेसिंग अलग अलग जो होते हैं ना आपको पास थ्रू करना पड़ता है टेस्ट, सो व्हाट व्हाट विल दोस.
0: हमारा बहुत सारा राउंड्स था. वन डे फॉर डे वन वाज सैश डेज, जब हम सब इकट्ठे होते हैं 16 ऑफ अस स्ट्रेंजर्स, इंट्रोड्यूस आर सेल्व्स, और वो सैश सेरेमनी होता है. वो था डे वन. डे टू वाज ऑल अबाउट इंटरव्यूज होते हैं वन ऑन वन विद द ज्यूरी. तो वो बंद कमरे में होता है 10 लोग, या आप इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर देयर. बट हमारा 10 ज्यूरी पैनल था, उनके सामने एक राउंड था पूरे दिन. और इन बिटवीन दिस, इट्स नॉट जस्ट दिस, इट्स अ डे स्टार्ट्स विद हमारा वॉक सेशन. कहाँ से एंट्री होना है स्टेज पे, हाउ डू यू वॉक, द पेस ऑफ योर वॉक एंड कम्युनिकेशन, कैसे क्वेश्चन आंसर्स कोई भी आ जाते हैं तो वी हैव टू बी प्रिपेयर टू आंसर देम. सो इसकी भी ट्रेनिंग हुई थी. थर्ड डे वॉज अबाउट आर टैलेंट राउंड. आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो, वेदर इट्स अबाउट सिंगिंग, डांसिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सब हुआ था. डे थ्री. डे फोर वॉज ऑल अबाउट नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था. सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट अपने अटायर्स में आए थे. कोई पीकॉक बनी थी, मैं बनी थी महालक्ष्मी. तो मैं पूरी महालक्ष्मी के अटायर में गई थी. हमारा जो गॉडेस है, हम जो वर्शिप करते हैं, इट इज़ लक्ष्मी माता. सो आई वॉज माता लक्ष्मी. तो वो था. और द फाइनल डे वॉज द फिनाले डे. तो उस दिन भी बहुत सारे राउंड्स थे. इवनिंग गाउन राउंड था, क्वेश्चन आंसर राउंड थे. तो या इट वॉज क्वाइट इवेंटफुल.
1: जी हाँ, इट साउंड्स क्वाइट एक्साइटिंग, अ बिट ऑफ स्ट्रेस एज वेल, बिकॉज बंद कमरे में 10 पीपल आस्किंग क्वेश्चंस, कांट इमेजिन व्हाट वुड दैट हैव बीन लाइक. बट सिंस यू हैव गॉन थ्रू एंड यू हैव वॉन द क्राउन, सो यू मस्ट हैव जो जो कुछ हुआ अच्छा हुआ होगा. यू मस्ट हैव पास्ड द टेस्ट, या यू वुड हैव आंसर्ड व्हाट एवर उन्हें जो सुनना था. एंड देन टैलेंट, सो व्हाट इज योर टैलेंट, व्हाट आर योर टैलेंट्स?
0: आई लव सिंगिंग एंड आई लव डांसिंग. तो मैंने दुबई में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं, जो परफॉर्मेंसेस बोल सकते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस वे यू सिंग एंड यू डांस एज वेल. बट ये टैलेंट राउंड था और मुझे पता था कि इसमें मार्क्स ज़्यादा लगेंगे. तो इट वॉज़ अ स्ट्रेसफुल मोमेंट मे बी. अगर मैं सिंग भी करूँ और डांस भी करूँ, आई कॉन्ट बी फोकसिंग ऑन ईदर ऑफ देम. सो मुझे लगा कि मुझे डांस करना चाहिए. एंड आई वॉज नोन इन माई चाइल्ड हुड टाइम्स दैट कि अच्छा एक्सप्रेशन देती है. सो इट वॉज मोर अबाउट एक्सप्रेसिव डांसिंग. सो माधुरी दीक्षित के 2 गाने सेलेक्ट किए थे. वी हैड अ टाइम लिमिट ऑफ 3 मिनट्स. सो आई मर्ज्ड टू ऑफ हर सॉन्ग्स एंड आई जस्ट परफॉर्म्ड. एंड होपफुली जूरी को पसंद आया होगा तो यस
1: यू आर ना थैंक यू सो मच तृप्ति जी, और आने के लिए भी शुक्रिया कहेंगे, शेयरिंग योर स्टोरीज, एनकरेजिंग अदर्स एंड इन कमिंग इन ईयर्स आई एम श्योर यू विल बी जस्ट एन इंस्पिरेशन टू मेनी हम यंगस्टर्स कहेंगे, जो हम कहेंगे पॉपुलेशन भी बोल सकते हो, इंडियन जो इंक्रीज हो रहे हैं खास करके क्राइसिस में।

0: So obviously they'll be looking up to it, and I think people need this kind of competitions as well. Or I know many people are interested. Or I think ये जो social media भी हो चुका है, where people are connected easily with what's happening out around the world. एक समय था जब I know this kind of events होते होंगे, and I'm sure how many people would have been applying, or even उसको पता भी नहीं लगता होगा कि कुछ हो रहा है. But nowadays you are able to know, and with this and हमारा भी वही काम होता है. The what we try to do is just pass the message around. And talk to people like you who can inspire others. And किसी का ड्रीम है, जैसे हम हरदम बोलते हैं कि keep dreaming. आप ड्रीम करोगे तभी आप एक दिन वो अचीव करोगे.
1: Exactly. That's my message to everybody. You know, you should never stop dreaming. Never put a full stop because कोई भी circumstances हो, कोई भी age हो, कोई भी expectations होते हैं society के, just ignore everything and just focus what you want to do. That's what I did. I never stopped myself at the age of 43. If I can do, I think you can do as well. आप मुझे फॉलो कर सकते हो तृप्ति कामत इंस्टाग्राम पेज पर, और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू पेजेंट, आई एम देयर टू हेल्प, टू गाइड कहाँ जाना है, और डू गिव इट अ ट्राई. थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक यू तृप्ति जी. नाइस टू मीट यू. एंड कम बहुत कम लोग हैं जो अपना बताना चाहते हैं. आपने हमने पूछा भी नहीं, आप बता दिया. सो थैंक यू फॉर मेकिंग इट इजी फॉर अस, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ए स्टोरी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग अलोंग. एंड वेल, इट डजंट स्टॉप ओवर देयर. आई एम गेसिंग देयर बी मोर थिंग्स आपके पाइपलाइन में, और भी बहुत कुछ होंगे विच यू माइट वॉन्ट टू ट्राई. देन गो फॉर इट एंड कीप अस अपडेटेड सो दैट वी आर इन टच एंड वी कैन शेयर द स्टोरी. जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो ऑफ, एंड फंडिंग ये कैसे होता है? डिड योर हस्बैंड पे फॉर ऑल दोज एक्सपेंसेस?
1: यस, इनमें आई वॉन्टेड टू से दैट देर इज़ अ क्वाइट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट हियर. आप थोड़े बहुत इसमें इन्वेस्ट करना होता है. आई हैव पेड अ फ्यू लैक्स, आई वुड से, ये शो के लिए. तो ये मैं बोलूँगी इट्स एन इन्वेस्टमेंट. इसके साथ बहुत सा चीज़ें आती हैं. यू गेट क्वाइट अ फ्यू आउटफिट्स बाय डिज़ाइन बाय देयर इन हाउस डिज़ाइनर, और ट्रेनिंग होती है जो इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है. बिलीव मी, इससे बहुत सारी अपनी पर्सनैलिटी जो चेंज हो जाती है, जो आप रहते हो वो नहीं रहते हो. You should think that, you know, it's a kind of a personality development. Invest कर रहे हो आप पर, तो आपको definitely उसका एक result और outcome भी मिलेगा. So you have best coaches, 3 months program होता है, weight loss, nutrition, coaching, how you walk, how you talk. तो हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है डेफिनेटली इसमें.
0: जी हाँ, थैंक यू तृप्ति. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिफोर गो फॉर एन अ बिट टफ वन, कि जैसे आप बोलते हो दैट जो कुछ भी आपका ट्रेनिंग मिला है चेंजेस यू, सो व्हाट्स वन थिंग जो आपको लगता है यू आर नॉट द सेम तृप्ति जो शायद आप जब लीव किए थे न्यूजीलैंड एंड जब वापस आई, व्हाट इज दैट चेंज?
1: द चेंज आई वुड से दैट टू फेस ऑडियंस. जब मैं न्यूजीलैंड आई, उसके पहले मैंने बहुत सारी ऑडियंस को फेस किया है. मैं शोज देती थी, गाना गाती थी, जैसे मैंने कहा आई वाज अ परफॉर्मर. तो यहाँ जब आई, 8 साल कुछ नहीं किया था. दैट वाज अ पॉज बिकॉज आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय लाइफ. मेरे रूटीन पे मैं फोकस कर रही थी. मेरा चेंज अभी ये है कि आई कैन डू एनी थिंग वॉट आई वॉन्ट टू डू. वो कॉन्फिडेंस जो आया है, वो जस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस to talk, to see the way I see world, the way I talk to any strangers, वो मुझे वो feel नहीं आता. वो मुझे डर नहीं लगता कि इस तरह से बात करना है तो किस तरह से बात करना है. judgmental रहता था मेरे दिमाग में कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. Now I'm so firm because ये शायद वो training के वजह से वो होते गया. And yes, there will be guidance, but at the same time, just think that, you know, you have to shift your mindset. Aapki wo thinking thodi wo change ho jati hai, and it is just you. Believe in yourself. Have the confidence. Wo aap insaan nahi rahoge jahan aapne start kiya tha. Aap alag insaan banoge. That's for sure, guaranteed.
0: Thank you so much, Trupti. And election is coming up. Maybe you can even try that one as well. But no, बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे आने के लिए और शेयर करने के लिए और खासकर हमारे जो ऑडियंस है जो लिसनर्स है जो व्यूअर्स है उनको इनकरेज करने के लिए बिकॉज देर इज द होल पर्पस वही हम कर रहे हैं हम जागरण कर रहे हैं कि यू कैन बी एक्टिव

यू कैन डू दिस थिंग्स बिकॉज न्यूजीलैंड आवर नंबर्स आर ग्रोइंग, और हम यही हर वक्त हम यही कहते हैं जब भी हमें मौका मिलता है क्यों हम पीछे रहें, बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे देन वी वुड बी ऑब्वियसली हम पीछे छूट जाएंगे. सो हमें कदम से कदम बढ़ाना है और हम आगे बढ़ते रहना है. सो थैंक यू सो मच और कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड वी विल कैच अप अगेन. और जैसे जैसे अगर आप ऐसा और भी कुछ कार्य करते हो देन डू लेट अस नो, वी विल बी हैप्पी टू कैच अप एंड लिसन टू योर स्टोरीज एंड शेयर इट अराउंड ऑन आवर प्लेटफॉर्म. तो चलो मैं एक और गीत सुनते हैं एंड दिस इज

जुड़े रही हैं, बिकॉज वी विल हैव अ फ्यू मोर सॉन्ग्स फॉर यू टुडे बिफोर वी नॉक ऑफ फॉर द इवनिंग. तो शुक्रिया सभी को साथ देने के लिए. हम कंटिन्यू करेंगे फ्रिक्वेंसी पे. जो हमारे साथ फेसबुक लाइव है, वी विल बी सेइंग शुभरात्रि. हम आपसे फिर कभी मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब भी हमें जिससे समय मिलता है, बट अभी के लिए शुक्रिया. सो निको, यू कैन स्विच ऑफ द वीडियो. एंड जो फ्रिक्वेंसी पे है, आई विल प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू.

जी हाँ, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमने वादा किया था कि हम आपके लिए और भी कुछ सॉन्ग्स बजाएंगे, तो देखते हैं कि मेरे पास कौन सा सॉन्ग नेक्स्ट है। और हम साहिल को भी याद कर लेते हैं, बिकॉज अगर होता तो ही विल बी एबल टू चूज द राइट सॉन्ग्स फॉर यू। आई विल गिव माई बेस्ट। वैसे तो जब भी मैं रहता हूँ मैं 80s में चला जाता हूँ, बट दिस टाइम आई थॉट कुछ और सॉन्ग बजाता हूँ। आई एम नॉट श्योर किस ईयर का ये मूवी था, बट यू मे हैव हर्ड मेरा पिया घर आया, मधुरी दीक्षित का एक्चुअली सॉन्ग है। चलो सुनते हैं, होपफुली यू विल एंजॉय दिस।

जी हाँ, मेरा भी आया। और राम जी, आप सुन रहे थे, होपफुली यू एन्जॉयड द सॉन्ग। मैंने कोशिश किया था टू गिव यू ए लेटर सॉन्ग, और दे नेक्स्ट सॉन्ग मैं ढूंढ ही रहा था। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट लिसन टू सॉन्ग दिस डेज, लेकिन एक सॉन्ग भी आया है यूट्यूब पे आज की रात। नो, इट्स नॉट द ओल्ड वन, आई थिंक ये नया वर्जन है, विच आई मे नॉट हैव हर्ड प्रॉपरली। तो मैंने सोचा चलो हाथों हाथ ये भी हम सुन लेते हैं। इट्स 15 years ago, सो आई एम से इट शुडन्ट बी 80, सो कुछ नया ही होगा। तो ये सुनते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं हमारे पास कितने समय बचता है। इफ वी हैव टाइम वी विल प्ले अ फ्यू मोर सॉन्ग्स फॉर यू, अदरवाइज हम फिर मिलेंगे जैसे हमें नेक्स्ट समय मिलता है।

दोस्तों सभी है जलसा फिजी रेडियो। होपफुली आपको ये गाना पसंद आया होगा और यादें कुछ ताज़ा हो चुकी होगी। आपका क्या ख्याल है, विच वन डिड यू प्रेफर, द ओल्ड डॉन या और जो शाहरुख खान का जो न्यू डॉन उसने ट्राई किया था। एनीवे आप सोचते रहिए, लेकिन हम और गीत आपके लिए बजा देते हैं बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम। और ये सॉन्ग वॉज आपने देखा होगा जो फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन के ऊपर, अभिषेक एंड ऐश्वर्या, दे डिड अ प्रीटी गुड डिसेंट जॉब इन दिस मूवी, स्पेशली अमिताभ बच्चन, आई एक्चुअली एंजॉयड हिज रोल। तो चलो ये हम आपको सुनाएंगे और फिर देखते हैं हमारे पास और कितना समय बचता है।

जी हाँ, चलो हम अब आपसे अलविदा चाहेंगे इस वादे के साथ में कि हम जुड़ जाएंगे नेक्स्ट सैटरडे इसी तरह 5 PM to 6 PM, ज़रूर हमसे जुड़ जाइए। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस और आपके कंट्रीब्यूशंस के लिए। और आपको याद दिला दे कि अभी भी समय है, हरियाली तीज आपको जाना है तो टेम्पलटन होल 64 केक रोड आप जा सकते हो।